0: SBS South Asian.
1: अच्छा सुनना, एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा?

10 जून बरोज बुध की मुख्तसर उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी। अमरीकी सेंट्रल कमांड या सैनकॉम ने कहा है कि उनकी फौज ने एक अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमला किया है। सैनकॉम के बयान में कहा गया है कि ये मिशन बिलाजवाज ईरानी जहरियत का मुतनासिब जवाब था। दूसरी तरफ इसराइली जंगी तैयारों ने लबनान के कस्बे सूर में बड़ा फिजाई हमला किया है। लबनानी सरकारी नशरियाती इदारे का कहना है कि इसराइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लबनान की वजारत सेहत आमा की जानिब से जारी आदाद व शुमार का हवाला देते हुए बताया गया है कि इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई के आगाज़ के बाद से अब तक 3,666 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 11,321 जख्मी हुए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक पैगाम में मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। उन्होंने इसराइल की जानिब से गजा जाने वाले रास्तों की बंदिश के फैसले पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है।

एक्शन कमेटी की कॉल पर मंगल के रोज़ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई, जबकि लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाली रैलियों में शामिल मुजाहिरीन की पुलिस से जगह जगह झड़पें हुईं। कालादम करार दी गई जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मदद या उनके बारे में इत्तला फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मंगल के रोज़ हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके पेश नज़र मुजफ्फराबाद और कई शहरों में तमाम मार्केट्स और कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा, जबकि सरकारी दफातर खुले थे मगर उनमें हाजिरी गैर मामूली हद तक कम थी। शवाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान में पुलिस ने एक एहतजाज पर फायरिंग की, जिसमें एक दर्जन से ज़ायद खवातीन के लिबास के ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ वर्जी पर उन्हें हिरासत में लिए जाने के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया जा रहा था। ख्याल है कि मगरबी शहर हरात में होने वाले इस एहतजाज में 150 अफराद शरीक थे। अफगानिस्तान में 2021 से तालिबान की हुकूमत ने शरीयत कवानीन की सख्त तशरी के तहत कवानीन नाफिज किए हैं। हुकूमती फैसलों के खिलाफ एहतजाज गैर कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र अफराद पर सोशल मीडिया पाबंदी के नफाज को 6 माह गुजरने के बाद माहरीन और नौजवान इसके मिले जुले नतज पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पाबंदी के तहत कम उम्र सार्फीन को प्लेटफॉर्म तक रसाई देने की सूरत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स और यूट्यूब जैसे कई दीगर प्लेटफॉर्म पर 49.5 मिलियन डॉलर तक के जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। ताहम मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में और हुकूमती ज़राए के मुताबिक बच्चों के इन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बंद करवाने में मुश्किलात का सामना दरपेश है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर सेहत मार्क बटलर ने कहा है कि वो पुरउम्मीद हैं कि बच्चों की बहबूद का NDIS का मुतबादिल प्रोग्राम 2028 से पहले मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। नशोनुमा की ताखीर या ऑटिज़म का शिकार बच्चों को इस प्रोग्राम में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत NDIS के बढ़ते हुए अखराजात को काबू में लाने के लिए इसके अखराजात में कटौती कर रही है। ख़ानदानों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल की देखभाल के हवाले से इस प्रोग्राम की कटौती पर तशवीश पाई जाती है। विक्टोरियन लिबरल रहनुमा जैसन विल्सन का कहना है कि वो वन नेशन की हिमायत के बगैर भी रियासती इंतखाबात जीतने के लिए पुरएतमाद हैं। फ्रेश वाटर स्ट्रेटजी के एक सर्वे के मुताबिक 39% लेबर वोटों के समेत ज़्यादातर वोटर समझते हैं कि वज़ीर आला जैकिंटा एलन को तब्दील किया जाना चाहिए। AFL के लीजेंड नील डैनियर को आज दोपहर MCG में स्टेट जनाजे के जरिए अलविदा कहा जा रहा है। मोटर न्यूरॉन बीमारी के ख़िलाफ़ उनकी दिहाई भर की जद्दोजहद के दौरान उन्होंने खैराती इदारा कायम किया, जिसने $141 मिलियन से ज़ायद तबी तहकीक के लिए फराहम किए। उन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के लिए भी नामजद किया गया था। उनका इंतकाल गुज़िश्ता माह 65 साल की उम्र में हुआ। सिडनी के दूसरे एयरपोर्ट वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट से पहली परवाज 25 अक्टूबर को रवाना होगी और इसके टिकट्स अब फ़रोख के लिए दस्तियाब हैं। पहली परवाज जैसे जेट स्टार की तरफ से 11 बजे गोल्ड कोस्ट के लिए रवाना होगी। इब्तदाई बैन अक्वामी रूट्स में ऑकलैंड और चांगी एयरपोर्ट की परवाजें शामिल हैं। यह नया एयरपोर्ट 24 घंटे नाइट कर्फ्यू के बगैर काम करेगा। याद रहे कि सिडनी का मौजूदा एयरपोर्ट रात के कर्फ्यू के तहत चलता है। और यहीं पर अब तक की मुख्तसर ख़बरें ख़त्म करते हैं।

और हड़तालें और लॉन्ग मार्च, वहाँ क्या कुछ हो रहा है ये सुनिएगा पाकिस्तान से मौसूल होने वाली एक रिपोर्ट में। इसके अलावा गीत नगमे भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। और क्यों ना इस वक्त आपको हम एक मूसीकी की दुनिया में लिए चलें और आपको सुनाते हैं बशीर जावेद की आवाज़ में फ़िल्म खुदा के लिए का ये गीत।

0: अभी आप शोएब मंसूर की अपने वक्त की मारूफ फिल्म खुदा के लिए का टाइटल सॉन्ग सुन रहे थे। अब आपको एक वक्फे की तरफ लिए चल रहे हैं, मगर वक्फे से जब वापस आएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आपको सुनवाएंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखना अच्छा फैसला है। ये हमारी फ्यूल इन फोकस पॉडकास्ट सीरीज़ का हिस्सा है जो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के में आपको सुनवाई जा रही है। इसके अलावा मेडल ऑफ ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर हासिल करने वालों से बातचीत भी आप सुन सकेंगे और पाकिस्तान भी आपको लिए चलेंगे और गीत और नगमे भी बहुत से हमारे पास आपके लिए मौजूद रहेंगे, मगर ये सब कुछ इस वक्फे के बाद। NITV का द पॉइंट एक मत अमली और तजियों पर मबनी इंटरव्यूज एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद की सकाफत सियासत और माशरती मसाइल का अहाता किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
1: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
2: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
0: NITV के जरिए उन मसाइल से आगाही हासिल कीजिए जो एब ओरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद के लिए अहम हैं। NITV चैनल 34 पर या SBS ऑन डिमांड पर देखिए। SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे सातों दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए।
3: SBS Audio.
4: प्ले बटन दबाइए, नई दुनिया पाइए।
5: लाओ जी ऑस्ट्रेलिया,准备好了吗
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
4: 60 से ज्यादा जबानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट. सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio app डाउनलोड कीजिए.
11: sbs.com.au/audio.
0: आप हैं SBS उर्दू के साथ और मैं हूं रेहान अलवी। अब ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की तरफ हम आपको लिए चल रहे हैं, मगर इससे पहले ये याद दिलाएं कि आपको हम इसके अलावा मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करने वालों से भी मिलवाएंगे और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो हड़तालें हलाकतें और एहतजाज जारी है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। मगर आइए पहले जिक्र करते हैं बर्की गाड़ियों का कि क्या वाकई इलेक्ट्रिकल गाड़ी ख़रीदने का के बारे में अगर आप सीरियस हैं लेकिन नहीं जानते कि ये आपके लिए अच्छा फ़ैसला है या नहीं, तो इस हफ़्ते खुश आमदीद ऑस्ट्रेलिया में जानिए इंतखाब करते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पेश कर रही हैं वर्दा वक़ार।
12: आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करता पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं।
13: सामीन, क्या आप हालिया अदम इस्तेहकाम और ईंधन की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल के असरात महसूस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानिब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। फरोख्त बढ़ रही है और हुकूमती मरात इस तब्दीली को आगे बढ़ा रही हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवर्स के लिए ये तब्दीली किस हद तक अमली है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिन्हें ईवीज कहा जाता है, ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम ना होने की वजह से तेजी से मकबूल हो रही हैं। सनदी डेटा के मुताबिक अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में बेची गई हर 6 में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। हुसैन देह स्वयंबर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इब्तदाई सरमायाकारी अभी भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की निस्बत ज्यादा है, मगर जब से उनकी फरोख्त और इंतखाबात में इजाफा हुआ है कीमतों में कमी वाकई हुई है।
3: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
13: EV خریدتے وقت دستیاب مراعات کے لیے اپنی ریاست یا علاقے کی حکومت سے رابطہ کریں. تنخواہ کی پیکیجنگ کے انتظامات پر ملازمین ای وی لیزنگ کے لیے ٹیکس میں رعایت بھی حاصل کر سکتے ہیں. رائل آٹو موبائل کلب آف ویسٹرن آسٹریلیا میں گاڑیوں اور ایندھن کے مینیجر ایلکس فارسٹ بتاتے ہیں.
6: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
13: Petrol aur diesel gaadiyon ke muqable mein electric gaadiyan chalane mein sasti hain. Andaaza hai ki driver salana eendhan ki lagat mein 70% tak aur servicing ki lagat mein 40% tak bachat kar sakte hain. Professor Dia wazahat karte hain.
3: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
13: لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عوامی چارجنگ اسٹیشنز پر بجلی کی خریداری پر بچت کم ہوتی ہے کیونکہ فی کلو واٹ گھنٹہ قیمت گھر میں چارجنگ کے مقابلے میں زیادہ ہے. موجودہ مارکیٹ میں برقی گاڑیوں کی رینج کے بارے میں کیا خیال ہے؟
3: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
13: اگر آپ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو ایک وقف شدہ الیکٹرک گاڑی کا چارجر نصب کرنے کے لیے اپنی مینیجنگ باڈی سے اجازت لینے کی ضرورت ہو. لیکن کئی ڈرائیوروں کے لیے اپنی الیکٹرک گاڑی کی کیبل کو گھریلو پاور آؤٹ لیٹ میں لگانا ہی کافی ہوگا. ایلکس فارسٹ وضاحت کرتے ہیں.
6: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
13: آسٹریلیا میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ابھی 20 سال سے کم عرصے سے موجود ہیں، اس لیے پرانی گاڑیوں کی مارکیٹ کی ابھی ابتدا ہی ہے. تاہم گزشتہ کچھ مہینوں میں استعمال شدہ ای وی گاڑیوں میں صارفین کا اعتماد کافی بڑا ہے اور ان کی دوبارہ فروخت کی قیمتیں پیٹرول گاڑیوں کے برابر آتی جا رہی ہیں. کسی بھی نئی گاڑی کی طرح بعد از فروخت سروس کی حمایت اور سروسنگ کے اختیارات پر غور کرنا ضروری ہے. ممکنہ خریداروں کو بیٹری کی وارنٹی پر بھی غور کرنا چاہیے. تاہم خوش آئند خبر یہ ہے کہ ای وی مارکیٹ کے لیے مسابقتی ہونے کا فائدہ صارفین کو ہوتا ہے. ایلکس فارسٹ وضاحت کرتے ہیں.
6: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
13: سامعین آپ سن رہے تھے خوش آمدید آسٹریلیا اور میں ہوں وردہ وقار.
12: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلین کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
0: یہ تو تھی برقی گاڑیوں کی کہانی. آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ اور کچھ دیر میں ہم آپ کو اور بھی کچھ دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹس آپ کو سنوائیں گے. مگر کیوں نہ برقی گاڑیوں سے نکل کر کچھ ساز و آہنگ کی دنیا میں چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ موسیقی بھی دل کے تاروں کو جھنجھناتی ہے. آج اس وقت آپ کو سنوا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ترک وفا کا یہ گیت. یہ او ایس ٹی محسن عباس اور نرمل رائے نے گایا ہے.

अभी आप ड्रामा सीरियल तर्क वफा का गीत सुन रहे थे। नुमाया आवाज़ें मोहसिन अब्बास और निर्मल रॉय की थीं और एक वक्फ़ा ले रहे हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करने वालों की बातचीत आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी कश्मीर का भी जिक्र करेंगे और कुछ गीत और नगमे भी आपके लिए लेकर आएंगे और कुछ ऐलानात भी। मगर ये सब कुछ इस वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बैन लक्वामी डॉक्यूमेंट्रीज से क्लासिक फिल्मों तक, आलमी ड्रामों से बेहतरीन मिजाहिया प्रोग्रामों तक, सब कुछ देखने के लिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS साउथ एशियन

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: अवार्ड याफ्ता आलमी ड्रामे, खेल और डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ SBS टीवी पर चैनल 30, SBS वाइसलैंड या चैनल 31 पर देखिए। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड नए तारकीन वतन को रिहाइश, सेहत, रोजगार और दीगर मौजूदात पर मालूमात फराहम करता है। sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शोज और फिल्में मुफ्त स्ट्रीम कीजिए। किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर देखने के लिए SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पर जाइए।
2: sbs.com.au/urdu को अपना ऑनलाइन घर बनाएं। ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और तफरीही प्रोग्राम sbs.com.au/urdu पर। SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर।
3: SBS उर्दू की ये नशरियात आप न सिर्फ रेडियो पर बल्कि हमारे वेब पेज के ज़रिए भी और मोबाइल ऐप के ज़रिए भी सुन सकते हैं। जी हाँ, SBS उर्दू की मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर मुफ्त मौजूद है और हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। instagram.com/sbsurdu पर आप शॉर्ट रील्स और बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद पाएंगे। facebook.com/sbsurdu पर हम रोज़ाना 4 बार दिन में आपके लिए सेगमेंट्स पेश करते हैं और उनमें वीडियोस भी शामिल होती हैं। इसके अलावा हमारा साउथ एशियन यूट्यूब चैनल भी मौजूद है और आप हमारी नशरियात न सिर्फ रेडियो पर बल्कि अपने मोबाइल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और जहां से आप मोबाइल किसी भी मोबाइल ऐप से सुनते हैं सुन सकते हैं, वहां से वो ऑडियो सारी आप सुन सकते हैं। आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करने वाले कुछ लोगों से बातचीत और ये पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहम्मद अली से जो चैरिटी तंजीम हेल्पिंग एसीटी चलाते हैं कैनबरा में। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं।
4: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
5: सामईन, हर साल ऑस्ट्रेलिया में किंग्स बर्थडे के मौके पर उन लोगों को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एजाज से नवाजा जाता है जिन्होंने किसी खास शोबे में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हों। इस साल ऐसी ही एक शख्सियत जनाब मोहम्मद अली साहब की भी है जिन्हें समाजी खिदमात के सिले में जनरल कैटेगरी में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एजाज दिया गया है। उनसे SBS उर्दू की खसूसी गुफ्तगु सुनिए इस पॉडकास्ट में। आपके लिए ज़ाती तौर पर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करना क्या मानी रखता है और ये आपके कम्युनिटी सर्विस के सफ़र की कैसे अकासी करता है?
6: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड मिलने पर याद फरमाया कि मैं अपने महसूसात आपके साथ शेयर कर सकूं। इस एजाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर इस अवार्ड का हुसूल बहुत फ़ख्र की बात है और मैं समझता हूँ कि ये फ़ख्र न सिर्फ एक शख्सी फ़ख्र है जो मैं महसूस करता हूँ अपने लिए, बल्कि ये एक इस बात का भी मुझे फ़ख्र है कि बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी ये एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे इस किस्म के अवार्ड से नवाजा गया है। एक और भी एहसास जो इस अवार्ड से जन्म दे रहा है वो यकीनन आजजी और इनकसारी का है। मैं बार बार मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं वाकई में इस काबिल हूँ कि इस किस्म का अवार्ड मुझे दिया जाए। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये देखें कि समाजी काम और चैरिटी वर्क बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा में बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को उनमें बहुत कमतर महसूस करता हूं और मैं महसूस करता हूं कि मैं खुशनसीब तो हूं लेकिन उन लोगों को भी इसमें शमूलियत का मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी एक बहुत अहम बात है जो बार बार मेरे जहन में आती है कि मैं 2022 में कैनबरा सिटीज़न ऑफ द ईयर मुझे दिया गया था और आज 2026 में ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इस किस्म की का अवार्ड वो एक चैलेंज भी होता है। वो ये चैलेंज होता है कि इसकी वजह से वो तवक्कात लोगों की बढ़ती हैं कि आपको हमने इस काबिल समझा, लिहाजा आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आप उस तवक्को या उन तवक्कात पर पूरा उतरें। तो ये मेरे महसूसात हैं इस बात पर कि मैंने इस वक्त जो ये अवार्ड हासिल किया है वो सिर्फ मोहम्मद अली की या मेरी ज़ाती काविश नहीं है। इसमें साथ साथ मेरे वो 50 से ज़्यादा हेल्पर्स, वॉलंटियर्स और कोलीग्स जो मेरी तंजीम हेल्पिंग ए सिटी में हैं वो शामिल हैं। और ये एक इज्तिमाई काम है। और मॉर्निंग टीज वगैरह होती रहती थी, तो वो $10,000 हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस साल नॉमिनेट करके दे दिया करते थे। फिर 2018 में जब मैंने सरकारी नौकरी को खुदा हाफिज़ कहा, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर ये बेबी पैदा हुई जिसका नाम हेल्पिंग ए सिटी है। और हेल्पिंग ए सिटी का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैम्ब्रा में और कैम्ब्रा के अतराफ में कोई भी ऐसा शख्स जो कि फूड की वजह से, जो कि भूखा सोने पर मजबूर है, वो भूखा ना सोए। ऐसा हुआ कि शुरू में 4 लोग शामिल थे जिसमें मनार भी शामिल थे, और फिर मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया वाली बात हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 वॉलंटियर्स या हेल्पर्स मौजूद हैं।
3: अभी आप कैनबरा के डॉक्टर मोहम्मद अली से बातचीत सुन रहे थे जो हेल्पिंग ACT चला रहे हैं चैरिटी तंजीम। उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है किंग्स बर्थडे के मौके पर। और एक और शख्सियत हमारी कम्युनिटी की ज़िया अहमद साहब हैं, उन्हें भी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। उन्होंने समाजी हमांगी और कम्युनिटी खिदमत किस तरह अंजाम दी हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं।
7: ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हासिल करना जो है एक बड़े ऑनर की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कम्युनिटी का काम किया है उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मुझे काफ़ी इनक्रेजमेंट मिला है। लेकिन इसको मेन स्ट्रीम कम्युनिटी की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो रिकॉग्नाइज किया गया है, इसके लिए मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है और फख्र की बात है कि मेरी जो ये जिस मुल्क में मैं आया और जहाँ पे मैंने इतने दिन गुजारे, और उस मुल्क से ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और इस तरह से मैंने जो कुछ इस मुल्क को दिया है उसको जो है इस मुल्क ने उसको जो है रिकॉग्नाइज किया है, और ये मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया 1971 नवंबर में यहाँ पे आया था। 18 साल की उम्र थी मेरी, और मैं अपनी वालदा वालिद और अपने 5 और भाई बहन के साथ यहाँ पे आया। और आते ही मुझे ये लगा कि ये मुल्क जो है वो नहायत ही अच्छा मुल्क है। और वालिद साहब थोड़ा सा पहले आ गए थे हमसे, तो आने के बाद से उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कम्युनिटी का काम करना काफ़ी शुरू कर दिया था। ख़ास तौर पे ये इंटरफेथ वर्क जो है, जो कि नान एलेबर के बाद से काफ़ी फैशनेबल हो गया, उन्होंने वो 71 ही में करना शुरू कर दिया था। तो मैं उनके एक तरह से शेडो के तौर पे यंग आदमी था, मैं साथ साथ उनके साथ लगा रहता था, और मेरे ख्याल में उनकी वजह से जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन हासिल हुआ कि मैं भी कम्युनिटी का काम करूँ और ख़ास तौर पर इंटरफेथ का काम करूँ और इस मुल्क के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने का काम करूं, और यहाँ पे एक पीस और हारमोनी और मिलजुल के रहने की एक मिलाने की कोशिश करूं।
3: कौन सी ऐसी मुश्किलात थी कम्युनिटी की खिदमत के दौरान आपको चैलेंजेस के तौर पर पेश आए?
7: यहाँ पे हालात काफ़ी मुश्किल थे एज ए मुस्लिम इस मुल्क में रहना। ना यहाँ पे कोई मस्जिद थी 71 में, ना कोई हलाल खाने का इंतज़ाम था, ना कोई हलाल रेस्टोरेंट थे, ना बुचर शॉप्स थी। तो बहुत ही छोटी कम्युनिटी थी और हम लोग परेशान थे कि ये इस फ्यूचर में हम लोगों का क्या होगा, कुछ दिन में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, या इवन मुसलमान के तौर पर इस मुल्क में रह भी रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से ये देन है और अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला का करम है कि उसने जो है हम लोगों को बहुत दिया इस मुल्क के अंदर। बड़ी तेज़ी से यहाँ पर मुस्लिम कम्यूनिटी जो है इस्टेब्लिश हुई, मस्जिदें बनी, हलाल गोश्त का इंतज़ाम हुआ और जो शुरू शुरू में जो मुश्किल थी अब जो है हमारी यंग जनरेशन जो है उसको समझ भी नहीं पड़ सकती है कि वो कितने आराम से यहाँ पर रह रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन ये जो है चीज़ें जो हैं पहले नहीं थी और इसमें जो है ख़ासतौर पर जो शुरू शुरू में लोगों ने काम किया है कम्युनिटी के लिए उसको हम लोगों को जो है वो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए।
3: जिया साहब, इस एजाज के जरिए अगली नस्ल के कम्युनिटी लीडर्स और रहनुमाओं को और नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
7: अगली नस्ल के लिए पैगाम देना चाहूँगा कि मैं हमारे यंग लोग जो हैं वो नेगेटिव चीज़ों के बजाय पॉजिटिव चीज़ों को लें। ये देखें कि कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में एक हमारे लिए पीसफुल जगह है रहने के लिए, ग्रो होने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, हम जो चाहें सोच सकते हैं और इसको जो हम लोग फॉर ग्रांटेड ना लें।
3: अभी आप ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करने वाले कुछ अफराद से हमारी बातचीत सुन रहे थे जिन्हें किंग्स बर्थडे के मौके पर इस एजाज़ से नवाजा गया है। और SBS उर्दू की कई पॉडकास्ट की वीडियोस SBS साउथ एशियन के उर्दू यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं @sbssouthasian/urdu पर आप जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर instagram.com/sbsurdu पर जाइए या facebook.com/sbsurdu पर भी हम मौजूद हैं। आप वहाँ हमें अपने मैसेजेस इनबॉक्स भी कर सकते हैं और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भी लिए चलेंगे। मगर उससे पहले क्यों ना मौसीकी की दुनिया में चलते हैं, शहजाद राय की आवाज़ में आपको एक गीत, उनके एल्बम का गीत सुनवाते हैं, दर्शन।

0: अभी आप शहजाद रॉय की आवाज़ में सुन रहे थे दर्शन, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे से जब वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहां बेचैनी, हड़तालें, एहतजाज और हलाकतों की खबरें आ रही हैं। वहां क्या कुछ हो रहा है सुनिएगा पाकिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में। इसके अलावा आपको ये भी याद दिला दें कि हमारे प्रोग्राम आप यहाँ SBS उर्दू पर, उर्दू का ये प्रोग्राम आप रेडियो पर तो सुनते ही हैं मगर आप इसे अपने डिजिटल TV पर भी चैनल 33 पर सुन सकते हैं। SBS 1 के ऊपर हम हर आपके लिए नशरियात लेकर आते हैं और TV पर आप इसे जुमे और इतवार को भी सुन सकते हैं। SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक 3:00 PM पॉप देसी पर नशर होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर 6:00 PM और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को 6:00 PM नशर मुकर्रर के तौर पर नशर किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। और एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद SBS उर्दू की नशरियात जारी रहेंगी।
1: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
2: SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे सातों दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए।
3: ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड नए तारकीन वतन को रिहाइश, सेहत, रोजगार और दीगर मौजूदात पर मालूमात फराहम करता है। sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए।
4: SBS Kickoff.
5: The new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's time for Africa.
4: It's live now
5: on DAB Radio, the SBS audio app,
4: online and SBS on demand.
7: SBS audio app आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या एप स्टोर से SBS audio app मुफ्त हासिल करें।
0: और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि SBS उर्दू की नशरियात के बहुत से ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो हम ऑन ईयर प्रोग्राम में पूरे या मुकम्मल तौर पे आपके लिए नहीं लेकर आ सकते। इसके अलावा भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से सेगमेंट शाये करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम हफ्ते में सिर्फ 2 बार होता है, इसलिए ये सारे के सारे सेगमेंट्स इस ऑन ईयर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते। तो अगर आपने कोई पॉडकास्ट सुना है, उसकी झलक सुनी है, उसके बारे में सुना है और उसे पूरा सुनना चाहते हैं, या हमारे वो सेगमेंट जो आपसे मिस आउट हो गए हैं, आप हमारे SBS उर्दू के वेब पेज के ऊपर जाकर उसे सुन सकते हैं sbs.com.au/urdu पर। और हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए मुफ्त मौजूद है। उसमें आप उर्दू लैंग्वेज को पसंद कर लें, मुंतखब कर लें और उसके बाद उस पर नोटिफिकेशन भी सेट कर लें तो हमारा कोई पॉडकास्ट आप मिस नहीं करेंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हड़ताल, एहतजाज और हलाकतों की खबरें आ रही हैं। वादी में क्या कुछ हो रहा है सुनते हैं पाकिस्तान से मौसूल होने वाली इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरें इस हफ्ते शहर सुर्खियों में रही हैं। इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान में मुकीम सहाफ़ी दानिश इरशाद से बात की है। आइए सुनते हैं वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। दानिश, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में हड़ताल की कॉल दी गई थी, वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या सूरत हाल है?
8: ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मीरपुर डिवीजन, बिलखसूस मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बिम्बर और कोटली से और तमाम शहरों से मीरपुर डिवीजन के और उसके साथ साथ पलंदरी ज़िला सतनौती से रावलकोट की तरफ एक बड़ी तादाद में लोग मूव कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में। और कोटली में तसादुम की खबरें भी हैं, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे गुज़श्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कालेदम करार दिया था, उस पर बैन लगाया था। और उसके साथ साथ उसकी जो और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो तसादम हुआ, झड़प हुई, तो उसमें कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। ताहम अभी तक हलाकतों की तादाद वाज़े नहीं है। उसके साथ साथ रावलाकोट शहर के अंदर देखा जाए तो रावलाकोट शहर में सुबह और रात को सिक्योरिटी फोर्सेस फ्लैग मार्च करती रहीं और उसकी वजह से खासा खामोश रहा ये शहर। आज सुबह के टाइम रावलाकोट का एक एरिया है चांदनी चौक, वहाँ पर कुछ लोगों ने जमा होने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने शेलिंग वगैरह करके उनको डिस्पर्स कर दिया था। तो आज की सूरत हाल ये है कि अभी तक लॉन्ग मार्च में क्रैकडाउन हुआ वो कोटली में और उसके नतीजे में कुछ हलाकते और कई लोग ज़ख्मी होने की इत्तला अभी तक मौसूल हो रही हैं। और ये लॉन्ग मार्च ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद है और हज़ारों की तादाद बताई जा रही है।
0: रावलाकोट में जो सूरत हाल दो दिन पहले पेश आई थी उसके बारे में काफ़ी अफवाहों का बाजार गर्म रहा है, तो रावलाकोट में इस वक्त सूरत हाल क्या है अमन व अमान की?
8: रावलाकोट की जो सूरत हाल है तो वो 5 जून से ही कशीदा है, 5 जून की रात से, और बिलखसूस उस वक्त से जब पहले हुकूमत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से इस जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालेदम करार दिया गया एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत, और उसके कुछ ही देर के बाद रावलाकोट में एक जो कोर मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उनको गिरफ्तार करने के लिए या फिर उन पर कातलाना हमला हुआ, जैसे भी हुआ उनके काफले पर फायरिंग हुई जिसके नतीजे में उनके एक साथी की मौत वाकई हो गई, और उसके बाद से उमर नज़ीर कश्मीरी को भी गोली लगी, उनके कान के एक निचले हिस्से में गोली लगी और कुछ सर के हिस्से में गोली छूती हुई गुजर गई या जैसे भी था, उनके सर पे तस्वीरें जो मैंने आखिरी टाइम देखी थी वो सर पे पट्टी लपेटी हुई थी और यही बताया जा रहा था कि कान के निचले हिस्से को लेकर और सर को ज़ख्मी करते हुए गोली चली गई। तो उसके बाद से लोगों ने एहतजाज शुरू किया, हालात कशीदा हैं और जो 7 और 8 जून की दरमियानी शब थी तो उसको फोर्सेज ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया। अभी तक जो रावलाकोट के अंदर इन 3-4 दिनों में जो अमवात हुई है उनकी जो तादाद हुकूमत ने बताई है, जो जिसको बैन अल-अक़वामी मीडिया हाउसेज ने भी कोट किया है, बिलखसूस अलजीरा की, मैं उसको मैं कोट करूँगा, तो उनके मुताबिक 11 कैजुअल्टीज हुई हैं जिनमें 4 जो थे वो सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार थे और बाकी 7 लोग जो थे वो सिविलियन थे, लेकिन मकामी लोग जो बता रहे हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों की कैजुअल्टीज़ के बारे में बता रहे हैं। ताहाल उनके बारे में हुकूमत ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं किया, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन रावलाकोट में आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रहा और फोर्सेस के फ्लैग मार्च देखने को मिले।
0: हालिया दिनों में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर से ऐसी खबरें आना शुरू हुई जिनमें लगा कि एकदम से तशद्दुद को भी उसमें का अंसर शामिल हो गया, जरा बैकग्राउंड बताइएगा, ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तों वाला मामला है इसका पस मंजर क्या है, मुख्तसरन हमारे सामाइन की मालूमात के लिए बता दीजिएगा।
8: महाजरीन की जो नशिस्तें हैं जो जेके असम्बली में हैं उनको गर्म कमी नशस्तें भी कहा जाता है और रेफ्यूजी सीट्स भी कहा जाता है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो 1947 में जम्मू एंड कश्मीर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जा बसे, उनमें पंजाब में भी जा बसे, केपीके में और सिंध के कुछ एरियाज में, और उन नशस्तों के लिए सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जाता था कि ये जो एजेके असम्बली है, एजेके लेजिस्लेटिव असम्बली है, वहाँ लेजिस्लेशन पे ये असरानंदाज होते हैं, चूँकि इन नशस्तों की जो तादाद है वो 12 है और इनकी इन 12 की 7 वोटिंग से जो मखसूस नशस्तें वजूद में आती हैं उनको कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 26% नुमाइंदगी बनती है हाउस की, और ये कहा जाता है कि ये मैनुपलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और मैनुपलेट किया जाता है इस सारे मामले जो लेजिस्लेशन होती है, और फिर हाउस को डिस्टेबल करने के लिए भी इन सीटों को इस्तेमाल किया जाता है, ये इस मामले का एक पहलू है। और फिर हुकूमत की जानिब से जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि चूँकि इन नशिस्तों का मामला मसला कश्मीर से है जो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक डिस्प्यूट है और इसकी वजह से हमने ये नशिस्तें रखी हैं ताकि जो श्रीनगर है और जो यानी वादी कश्मीर और जम्मू सूबे की जो नुमाइंदगी हो सके आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असम्बली में, तो इस वजह से ये सीट नशिस्तें रखी हैं। ताहम ये चीज़ें हकायक के बरक्स हैं, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर असम्बली है तो उसका जो जिस पेपर के तहत, जिस एक्ट के तहत वो चलती हैं, जिनको एक्ट 74 कहा जाता है, अब वहाँ पर पोलिंग कैसे होती है, कौन वोट कास्ट करता है, इस सारी चीज़ की किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं होती और इस तरह से इसमें किसी ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। तो ये सारा मामला है। इसके अलावा भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन जो इनके लिए कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर ये मसला है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये नशिस्तें हैं, तो इसमें किसी किस्म की मेरे ख्याल में कोई सदाकत नहीं। ये एक सियासी बयान के तौर पर इसको देखा तो जा सकता है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ भी इन महाजरीन का लिजान बरकरार रहे।
0: पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस सिलसिले में पाकिस्तान में मुकीम सहाफ़ी दानिश इरशाद से की गई बातचीत आप सुन रहे थे। मैं हूँ रेहान अलवी और आप हैं SBS उर्दू के साथ। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है और हम मोबाइल पर भी आपके साथ हैं। अब स्टूडियो घड़ियाँ कह रही हैं कि आपसे बिल्कुल रुख्सत लेने का वक्त आ गया, और जब रुख्सती का वक्त आता है तो शायद चलते चलते आपके कानों में रस घोलने के लिए कोई ना कोई गीत हमें आपकी समातों के तक पहुँचाना होता है। और इस वक्त मैं ऐसा गीत आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ जिसमें जाने वाले को रोकने का जिक्र है। जाहिर है घड़ी तो रुकती नहीं, मगर हम हर जगह मौजूद हैं, वेब पेज पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और मोबाइल ऐप पर, तो हमें फॉलो करते रहिएगा। आप ये खूबसूरत गाना अहमद रुश्दी की आवाज़ में इंजॉय कीजिए, फिल्म अमर अरमान का, जिसकी मौसीकी सुहेल राणा ने मुरतब की थी। और मुझे अपने आज के मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, फिर भी लेंगे घर खुदा लाया अल्लाह ने के बान।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज 10 जून 2026 की शाम, घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों और अहम अपडेट्स पर नजर डालने का. मैं हूं आपकी होस्ट भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वोई वुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर आज का कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के हमारे साथ जुड़ रहे सभी श्रोताओं को SBS हिंदी का नमस्कार. मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे हमारा साथ बना रहेगा जहां आपके लिए लेकर आऊंगी कुछ खबरें, प्रेरणादायक कहानियां और जानकारी का एक खास पैकेज. चाहे आप सिडनी में हो या मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी अन्य राज्य में, अगले एक घंटे में हम विश्व भर और ऑस्ट्रेलिया की सारी खबरें साथ में सुनेंगे. तो आज के कार्यक्रम में बात होगी NDIS सुधारों यानी रिफॉर्म्स की. फेडरल बजट में प्रस्तावित कटौतियों को लेकर दिव्यांग समुदाय के बीच चिंता बढ़ गई है. आखिर इन बदलावों का असर किस पर पड़ेगा और सेवा प्रदाताओं की क्या चिंताएं सामने आ रही हैं आज जानेंगे. साथ ही आपको बता दूं कि हम आज आपको मिलवाएंगे 2026 के OAM सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर अतुल कुमार गर्ग से. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 3 दशकों से अधिक समय तक समुदाय की सेवा करने वाले डॉक्टर गर्ग की कहानी समर्पण, नेतृत्व और समाज सेवा की एक प्रेरक मिसाल है. इसके अलावा आपको बता दूं कि हाल ही में SBS हिंदी ने एक खास सीरीज आपके सामने हम लेकर आए थे जिसको हम कहते हैं मनी मैटर्स. टैक्स सीजन के इस दौर में एक और जरूरी चेतावनी भी आज आपके लिए लेकर आएंगे. नकली ATO कॉल्स, व्हाट्सएप स्कैम्स और अब AI से मिलने वाली भ्रामक टैक्स सलाह मनी मैटर्स में स्वाति शर्मा आप तक लेकर आएंगी इसके चौथे एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि इन सभी चीजों से आप कैसे बच सकते हैं और अपने टैक्स रिटर्न को सुरक्षित तरीके से कैसे दाखिल कर सकते हैं. तो चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको आज का सवाल बता देती हूँ. आज मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग बताऊंगी और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म है. ध्यान से सुनिए, डायलॉग है, मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. एक बार फिर से आपको डायलॉग बता देती हूँ, मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. क्या आपको इसका जवाब पता है? अगर हाँ तो हमें अपने मैसेजेस भेज दीजिए. नंबर है 04397997667. इसके अलावा आपके लिए कुछ बढ़िया से गाने भी लेकर आऊँगी और इस दौरान आपको बताते रहना है कि आप मेरे साथ आज के शो में बने हुए हैं. तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले एक घंटे में होगी बड़ी खबरें, समुदाय की आवाज़, कुछ इंस्पायरिंग कहानियां और आपके पसंदीदा गाने. लेकिन इन सबसे पहले नजर डालते हैं कि देश और दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है. प्रस्तुत है 10 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से तेज हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान ने एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है. हालांकि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों अमरीकी पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं. वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अमरीका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे क्षेत्र में सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे वहां से हट जाना होगा. इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास कई हमलों और विस्फोटों की खबर दी है जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. वहीं उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में आव्रजन विरोधी प्रदर्शन यानी एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हिंसक हो गए हैं. एक चाकूबाज की घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. बात करें केन्या की, तो केन्या में भी अमरीकी सहयोग से प्रस्तावित एक इबोला क्वारंटीन सेंटर के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिले हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों को सैन्य अड्डे की ओर बढ़ने से रोक दिया गया है। उधर अफगानिस्तान के हेरत शहर में महिलाओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग की खबर आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रेस कोड उल्लंघन के आरोप में कई महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतरते नजर आए, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि तालिबान प्रशासन के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन पहले से ही प्रतिबंधित है। आइए अब नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबरों पर। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू होने के 6 महीने बाद इसके प्रभावों को लेकर मिलीजुली तस्वीर सामने आ रही है। नए नियमों के तहत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाबालिगों की पहुंच रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चे अब भी नए अकाउंट बनाकर इन प्रतिबंधों को

0: अपडेट सामने आई है। नए हवाई अड्डे से पहले उड़ाने 25 अक्टूबर से शुरू होंगी और टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि पहला जेटस्टार विमान गोल्ड कोस्ट के लिए रवाना होगा। ये एयरपोर्ट जो है वो 24 घंटे संचालित होगा, जो इसे मौजूदा सिडनी एयरपोर्ट से अलग बनाता है। बात करें भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की अवधि को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पद की शपथ ली थी और तब से वे लगातार इस पद पर बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। इस उपलब्धि पर राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों में इस पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमने सुना आज का न्यूज फ्लैश और अब बात करते हैं NDIS की। NDIS कटौती फेडरल बजट में बचत का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन इन्हें लेकर दिव्यांग समुदाय में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। किसे समर्थन में कटौती का सामना करना पड़ सकता है और क्या राज्य सरकारें इस कमी को पूरा करेंगी, ये अभी भी साफ नहीं है क्योंकि बातचीत फिलहाल जारी है। NDIS प्रोवाइडर हीना सिन्हा चुंग का कहना है कि ये अनिश्चितता प्रतिभागियों और सेवा प्रदाताओं दोनों के बीच इस बात को लेकर चिंता बढ़ाती है कि ये सुधार जमीन पर कैसे लागू होंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और ऑस्ट्रेलिया में नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS के भविष्य को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। फेडरल सरकार, ग्रीन्स और गठबंधन के बीच NDIS सुधारों और बजट के बाद प्रस्तावित टैक्स बदलावों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। संसद के शीतकालीन अवकाश से पहले अब केवल एक संसदीय पखवाड़ा बचा है और सरकार चाहती है कि इन सुधारों को जल्द से जल्द कानून का रूप दिया जाए। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष और ग्रीन्स का कहना है कि इतने बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले बदलावों को बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के पारित नहीं किया जाना चाहिए। इस राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे अधिक चिंता NDIS प्रतिभागियों और उनके परिवारों में देखी जा रही है। कई लोगों को डर है कि प्रस्तावित बदलावों का असर उनके दैनिक जीवन, सहायता सेवाओं और भविष्य की योजनाओं पर पड़ सकता है। ग्रीन्स पार्टी और गठबंधन दोनों ने संकेत दिए हैं कि वे सीनेट में चल रही दो अलग अलग जांच प्रक्रियाओं की समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं। ग्रीन्स NDIS में प्रस्तावित कटौतियां और संरचनात्मक बदलावों की गहन समीक्षा चाहते हैं, जबकि गठबंधन टैक्स सुधारों, नेगेटिव गियरिंग, कैपिटल गेन्स टैक्स छूट और ट्रस्ट से जुड़े प्रस्तावों की और अधिक जाँच चाहता है। उप लिबरल नेता जेन ह्यूम का कहना है कि सरकार ने इन विधेयकों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं दिखाई है।
1: Well, the government's approach to scrutiny of these bills has been nothing short of scandalous. This is a government that promised transparency and accountability. It was one of its commitments on returning to government, and yet it has done the exact opposite. All the Senate is expecting is the opportunity to scrutinize legislation, which is what the Senate's job is. That's our job.
0: उनका कहना है कि गठबंधन NDIS की मौजूदा व्यवस्था में सुधार का विरोध नहीं कर रहा है। उनका मानना है कि योजना की लागत तेजी से बढ़ रही है और इसकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी है। हालांकि वे कहती हैं कि जल्दबाजी में किए गए बदलाव कमजोर और जरूरतमंद लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
1: I don't think that we should be afraid of having longer inquiries and better scrutiny, deeper scrutiny of any legislation, whether it be the tax reforms that have gone through, so-called reforms, the tax increases that have gone through. Or whether it be through quite far-reaching changes to the NDIS. Now, let me be really clear. The coalition supports improving integrity around the NDIS. It's a program that has run out of control and is becoming unsustainable. It's going to cost Australians too much and potentially put those that are most vulnerable at risk. But at the same time, we want to make sure that

0: way that that integrity is being imposed is inappropriate and isn't leaving anybody behind.
1: आइए जानते हैं NDIS प्रदाता हीना सिन्हा चुंग का इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है.
2: सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लैरिटी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी अनाउंसमेंट्स डिक्लेयर होती हैं, फिर उनका एक एजेंडा बनता है कि 2027 में ये होगा, 2028 में ये हम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, पर कई बार वो फॉलो थ्रू हो नहीं पाता है. और कई बार पॉलिसीज जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम बात करें 50 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री की, दैट इंडस्ट्री इज लुकिंग after the most vulnerable people of our society. तो अगर हम उनकी जो lived realities हैं, उनको अगर हम इसमें consider नहीं करेंगे, तो ना ही government कोई outcomes achieve कर पाएगी, ना ही providers. So number one is clarity. We need more clarity. कब, कैसे, क्या changes लाई जाएंगी. और दूसरी चीज ये कि इन चेंजेस को अफेक्ट होने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइडर्स को चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, या फिर वो सिर्फ स्कीम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं. वो ये नहीं सोच रहे कि जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स हैं, वो कैसे कंटिन्यू कर सकेंगे अपना केयर.
1: सरकार की जल्दबाजी के पीछे एक बड़ा कारण फेडरल बजट भी है. कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स के हालिया बजट में NDIS सुधारों से होने वाली अरबों डॉलर की बचत को पहले ही शामिल किया जा चुका है. यदि ये सुधार समय पर लागू नहीं होते हैं तो सरकार के बजटीय अनुमान भी प्रभावित हो सकते हैं. क्रेटन इंस्टीट्यूट के डिसेबिलिटी प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सैम बेनेट का कहना है कि बजट में शामिल बचत का सबसे बड़ा हिस्सा NDIS से आने की उम्मीद है.
3: Well, it's going to have a very significant impact. As you said, I think, you know, whilst there's been a lot of focus on other aspects of the most recent federal budget, the tax reform elements in particular, there's a strong argument that the NDIS savings in that budget are the single biggest component of it. As you said, more than $37 billion, I think it is. It's more than a third of the overall savings in the budget. And obviously, if those savings don't materialize over the forward estimates as is expected, then that will have a significant knock-on impact.
1: हालांकि उनका मानना है कि NDIS में कुछ संरचनात्मक सुधार प्रस्ताव में आवश्यक हैं. उनका कहना है कि वर्षों से योजना की लागत जिस गति से बढ़ रही है, उसे नियंत्रित किए बिना इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना मुश्किल होगा. उधर NDIS मंत्री जेनी मैकलिस्टर सरकार के रुख का बचाव कर रही हैं. उनका कहना है कि सुधारों का उद्देश्य योजना को कमजोर करना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित बनाना है.
4: At the outset, I want to establish that the Albanese government remains committed to the long-term sustainability of the NDIS and ensuring that it continues to provide life-changing supports for people with permanent and significant disability.
1: सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक के तहत 2030 तक कम से कम 1,60,000 लोगों को NDIS से बाहर किए जाने का अनुमान है. यही वे प्रस्ताव है जिसने सबसे अधिक विवाद खड़ा किया है. सीनेट की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर मंत्री जेनी मैकलिस्टर और जॉरिन स्टील जॉन के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वहीं मैकलिस्टर ने जवाब देते हुए कहा है कि धोखाधड़ी पर कार्रवाई से होने वाली बचत सीधे प्रतिभागियों के हित में जाती है और इसी कारण वे बजट के आंकड़ों में अलग से दिखाई नहीं देती. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि धोखाधड़ी रोकना जरूरी है, लेकिन ये NDIS की वित्तीय चुनौतियों का मुख्य कारण नहीं है. डॉक्टर बेनेट के अनुसार अगले 2 वर्षों में प्रस्तावित बचत का बड़ा हिस्सा सामाजिक और सामुदायिक भागीदारी से जुड़े समर्थन कार्यक्रमों में कटौती से आएगा. ये वे सेवाएं हैं जो NDIS प्रतिभागियों को घर से बाहर निकलने, समुदाय से जुड़ने, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और अधिक स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करती हैं.
3: And that's because some of those other measures, those ones that are really fixing big structural problems with the NDIS, are going to take longer to design and to implement. And to enable that cut that I've just described to happen, the bill that's with the Senate at the moment would give the minister, or indeed any future minister, essentially a power to arbitrarily reduce funding for whole groups of support at any time they deem it necessary for the scheme's financial sustainability. So the focus at the moment might be on those social and community participation budgets, but it could be anything within the scheme really in future.
1: सरकार इन सहायता कार्यक्रमों में लगभग 50% तक कटौती का प्रस्ताव रख रही है. इसके साथ ही उन लोगों के लिए फाउंडेशनल सपोर्ट्स की भी व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं जो एनडीआईएस की पात्रता पूरी नहीं करते। इनमें ऑटिज्म और विकास संबंधी चुनौतियों वाले बच्चों के लिए थ्राइविंग किड्स कार्यक्रम भी शामिल है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि राज्यों और क्षेत्रों की सरकारें समय पर वैकल्पिक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाई तो कई लोग सहायता व्यवस्था के बीच में फंस सकते हैं।
3: But it places a huge onus on states and territories and the federal government getting their skates on to ensure that these services are in place in time for those changes because people will fall through the gaps if that doesn't happen.
1: अब सीनेट की जांच समिति अगले हफ्ते सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करेगी और 16 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस बीच हजारों एनडीआईएस प्रतिभागी, उनके परिवार और सेवा प्रदाता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि संसद में होने वाली राजनीतिक बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। क्या सरकार अपने प्रस्तावित सुधारों को समय पर पारित करवा पाएगी या फिर ग्रीन्स और गठबंधन की मांग पर इन्हें और अधिक जांच के लिए आगे भेजा जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। SBS न्यूज के लिए टी मिशेल की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश और उसके बाद हमने एक रिपोर्ट सुनी NDIS पर। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहें SBS हिंदी।
5: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
6: इनसाइट, SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
5: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियाँ, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो, देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
7: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
5: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS Learn में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
8: SBS Audio,
9: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
10: यही ज्यादा दिया, चुनबा हाल में।
11: SBS Chill, Chill.
12: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
15: Far from the partisan politics.
16: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
7: sbs.com.au/audio।
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। और आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:20 और यदि आप आज के कार्यक्रम में मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको बता दूं कि आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर ये सभी कार्यक्रम और अंश फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा SBS हिंदी इंस्टाग्राम पर भी आ चुका है और वहाँ पर हम आपके लिए खबरों को एक अलग अंदाज में यानी वीडियो फॉर्मेट में लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि विश्व भर में और ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ चल रहा है। तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और देखें SBS हिंदी का एक नया रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से आज का सवाल बता देती हूँ। अभी मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊंगी और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। डायलॉग कुछ इस तरह से है, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। एक बार फिर से बता रही हूँ, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो मुझे अपने जवाब 04397997667 पर भेज दें। और मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने ये फिल्म तो देखी ही होगी, लेकिन उसी वक्त पर सही जवाब भेजना और रिकॉल करना कि अरे ये यही फिल्म थी, ये होता है सबसे ज़्यादा टफ। तो यदि आपको पता चल चुका है कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाएँ और मुझे बता दें। और जब तक आप अपने मैसेजेस मुझ तक भेज रहे हैं, आइए सुनते हैं हमारी इंडिया रिपोर्ट और जानते हैं कि भारत में क्या हो रहा है।
8: भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के दलों की आज बैठक होने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा गठबंधन में शामिल दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक पद में रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम पर है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री 1952 से 1964 तक सत्ता में रहे थे। 1947 से 1952 का उनका कार्यकाल अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में था। भाजपा नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को लोकप्रियता और भरोसे से जोड़कर देख रही है। इसे बड़ी उपलब्धि मानकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली में हैं। उन्होंने इस बैठक के बारे में कहा,
11: हमारे देश के सुप्रिय प्रधानमंत्री जी के शानदार 12 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में 12 साल बेमिसाल, 12 साल विकास के, 12 साल विश्वास के और 12 साल गरीब कल्याण योजना के, इस पर सभी एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का बैठक।
8: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की।
17: आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यशस्वी पूर्ण प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल निभाने वाले नरेंद्र मोदी जी, एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। इस देश को विकास की ओर ले जाने का काम उन्होंने किया है।
8: सरकार अपनी 12 साल की सत्ता को उपलब्धियों का कालखंड बता रही है तो विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया है। कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं,
18: तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के बजाय छठी बड़ी अर्थव्यवस्था आज वर्तमान में भारत है और लगातार जो रैंक्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। और एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, एक बड़ा कारण है, रुपए की तेजी से गिरना। अब 97 तक तो 97 पार हो चुका है, 100 पास आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। महंगाई बढ़ती है, तेल का रेट बढ़ता है, जो भी इम्पोर्ट्स होते हैं उनका रेट बढ़ता रहता है। तो इससे बहुत भारी एक गहरी संकट हमारी अर्थव्यवस्था को जूझना पड़ रहा।
8: यूपीए काल से जीडीपी विकास दर की तुलना करते हुए अमिताभ दुबे का कहना है,
18: वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार, पूर्व सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम खुद ने कहा है कि जब यूपीए के समय जब जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा था, सच्चाई से 1.5% कम दिख रहा था और मोदी सरकार के शासनकाल में 1.5-2% ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप सीधी बात समझ सकते हैं कि एक तरफ वो जीडीपी का रेट आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं और लेकिन फिर भी हमारा जो जीडीपी टारगेट है वो मिस होते जा रहा है। तो आप बताइए, निकम्मापन जो है इससे साफ दिखाई दे रहा है।
8: राज्यसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उन पर जानकारी छिपाने का आरोप है। विधायकों की संख्या के आधार पर भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर आसानी से जीत हासिल हो सकती थी। भाजपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं जबकि कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार का नामांकन अब खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में 3 सीट भाजपा के नाम हो सकती है। वैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा इस मामले में खटखटा रही है। मंगलवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के गेट पर ही कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। धरने पर बैठे सचिन पायलट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया।
19: छोटे मोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसमें निर्वाचन आयोग किसी के नामांकन को रद्द नहीं कर सकता और हमारी उम्मीदवार के ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। एक नोटिस कोई आया होगा उसके आधार पर आप राज्यसभा का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है।
8: जानकारी छिपाने के आरोप पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं,
20: आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए।
8: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत ने ओमान को धन्यवाद दिया है। दरअसल ओमान तट पर अमेरिकी नौसेना के हमले के बाद जहाज पर सवार 24 भारतीयों की जिंदगी संकट में आ गई थी। ओमानी प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को इस बारे में बताया,
21: हमें ये पता चला कि ये जहाज पलाव के झंडे के साथ समुद्र में अपना काम कर रही थी। हमको ये भी पता चला है और ये हमको जानकारी है कि जहाज के बीच और अमेरिकी नौसेना के बीच उनके बीच वार्तालाप हुई। इस घटने से पहले इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक कार्यरत थे। जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। साथ ही साथ अन्य जो पक्षधर इसमें है, MRCC है, भारतीय जहाज मंत्रालय है, सबके साथ बातचीत करके तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया।
8: वैसे पश्चिम एशिया संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और LPG के दामों में हुई वृद्धि से आम लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ा है। दाम बढ़ाने के बावजूद तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ाई जा सकती हैं। और अंत में चर्चा मानसून की, जो पूरे दक्षिण भारत में सक्रिय हो चुका है। इसके अलावा पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून ने दस्तक दे दिया है। इसका प्रभाव अब मध्य और उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगा है। अगले 3-4 दिनों में उत्तरी राज्यों में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
1: तो दोस्तों, ये हमने सुनी खबरें भारत से और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि आज मैंने आपसे पूछा है एक फिल्म का डायलॉग और पूछा है कि आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। तो डायलॉग ध्यान से सुनिएगा। मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। अगर आपको इसका जवाब पता है तो 04397997767 पर अपने मैसेज मुझ तक भेजते रहें। और खूब सारे संदेश मुझे आ गए हैं और आप सभी के नाम, और ये भी बताऊंगी कि क्या आपका जवाब सही है या गलत है, क्योंकि कुछ गलत जवाब भी आए हैं। तो उसके लिए आप सुनते रहें SBS हिंदी, और उससे पहले आप ये बढ़िया सा गाना सुनें।

तो दोस्तों आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं मुझे। नंबर है 04397997667। आप मेलबर्न से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सिडनी से या कैनबेरा से, आपका एक संदेश हमारा दिन बना देता है। तो जरूर अपने सुझाव मुझे लिख भेजें और बताते रहें कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, किस तरह के गाने सुनने का आपको आज मन है, और आज के सवाल का जवाब भी जल्दी से भेज दें।

0: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
1: SBS Food के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS Food पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेक, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: SBS News In-Depth Podcast, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News In-Depth आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
3: SBS Audio App आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS Audio App एकदम मुफ्त है, इसे App Store या Google Play से डाउनलोड करें।
1: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
3: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
4: sbs.com.au/gujarati ને તમારું હોમ પેજ બનાવો. તાજા સમાચારો, સાંપ્રત ઘટનાઓ તથા મનોરંજન માટે sbs.com.au/gujarati ની મુલાકાત લો.
5: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं 2026 के OAM प्राप्तकर्ता डॉक्टर अतुल कुमार गर्ग से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 3 दशकों से अधिक समय से सामुदायिक सेवा से जुड़े डॉक्टर गर्ग ने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है और भारतीय समुदाय सहित कई संगठनों के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस सम्मान के पीछे केवल सार्वजनिक सेवा ही नहीं, बल्कि परिवार, पेशेवर जीवन और सामुदायिक दायित्वों के बीच संतुलन की एक प्रेरक यात्रा भी छिपी हुई है। तो आइए सुनते हैं ये खास बातचीत।
7: किंग्स बर्थडे ऑनर्स में एक नाम है डॉक्टर अतुल कुमार गर्ग का, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्हें अपने समुदाय की सेवाओं के लिए इस साल मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी OAM से नवाजा जा रहा है। 3 दशक से लंबा उनका सामुदायिक सेवा का एक इतिहास रहा है, एक कमिटमेंट रहा है, वॉलंटियर के तौर पर नेबरहुड सेफ्टी में, मल्टी कल्चरल एंगेजमेंट में। तो आज इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे उनसे। और सबसे पहले तो डॉक्टर अतुल, आपको हमारी तरफ से, SBS हिंदी की तरफ से इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।
8: आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशाली।
7: आप जब से ऑस्ट्रेलिया आए तब से आपने वॉलंटियरिंग और समाज सेवा शुरू की डॉक्टर गर्ग, जो कि आसान काम नहीं है, तो किस तरीके से ये समाज सेवा आपके जीवन में शुरू हुई?
8: सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया तो नौकरी सबसे पहले ढूंढना होता है, फिर देखना होता है कि कहाँ घर लेंगे, कहाँ पे स्कूल लेंगे। मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि मुझे ये सब चीजें फटाफट होती चली गई और एकदम से ऐसा सेटल हो गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो वहाँ पे तो नेवी में कमांडर था, बड़ी अच्छी जिंदगी थी, पर मेरी वाइफ की छोटी सिस्टर और मेरी वाइफ के बड़े ब्रदर ने माइग्रेट कर लिया, तो फिर मेरी वाइफ का भी इंटरेस्ट हो गया कि हम भी माइग्रेट कर लें। जब यहाँ पे मैं आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूँ, ऐसी अपनी डिसिप्लिन लाइफ से मैचिंग ऐसी चीज मिल गई जो नेबरहुड वॉच थी। तो इसलिए मैंने नेबरहुड वॉच में सबसे पहले आने का सोचा कि इसके अंदर ऐसा कुछ है जिसमें मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी और अपनी डिसिप्लिन लाइफ के साथ इसको अलाइन कर सकता हूँ।
7: नेबरहुड वॉच आपकी जिंदगी का पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से एक हिस्सा रहा है, जो कम्युनिटी सेफ्टी का एक पूरा आइडिया है। आपके हिसाब से किस तरीके से बदला है और क्या लोकल कम्युनिटीज जो हैं, वो अब एक बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं, खासकर समाजों को साथ मिलाने में?
8: नेबरहुड वॉच ये इनकरेज करती है कि नेबर ही एक दूसरे नेबर्स की मदद करें। हमेशा ऐसा सोच के चलें कि जो आज आप नेबर के ऊपर हेल्प कर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर संकट आ रहा है, उसकी मदद कर रहे हैं, तो कल को वही चीज आपके साथ भी हो सकती है। हर नेबर एक दूसरे की मदद करे, इससे ओवरऑल सेफ्टी सिक्योरिटी समाज में बढ़ती है और खास करके जो एल्डरली पीपल हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे लिए भी कोई देखभाल करने के लिए कोई है मौजूद। तो मुझे नेबरहुड वॉच में शुरू में जब मैं आया था तो इनकी भी एक हायरार्की है, जैसे स्ट्रीट रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर, फिर सबर्ब मैनेजर, फिर कमिटी मेंबर और फिर बोर्ड मेंबर, फिर बोर्ड चेयरमैन। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इन सब हायरार्की की पोजीशंस के थ्रू गुजर चुका हूं। पर पुलिस हेडक्वार्टर ने मुझे नेबरहुड वॉच के बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया है, तो अब मैं इनॉग्रल चेयरमैन हूँ। अभी तक पुलिस हेडक्वार्टर खुद इन नेबरहुड वॉच को चलाता था, अब वो चाहते हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी चलाए, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है। इनका सबसे पुराना वॉलंटियर होने के नाते उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है।
7: इसी के साथ साथ एक तो इतनी बड़ी नेबरहुड वॉच के साथ आपकी अचीवमेंट रही है, दूसरा भारतीय समुदायों के साथ वहां पे भी आपने बहुत काम किया है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी है, भाषा को लेकर के काम किया है, विश्वास को लेकर के काम किया है, उस सब में जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा गौरवान्वित क्या करता है, सबसे ज्यादा सुकून किस चीज में मिलता है?
8: सबसे ज्यादा सुकून तो मुझे इस बात का मिलता है कि मुझ में कुछ काबिलियत है कि मैं कोई भी नई संस्था को बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, और वो संस्था मेरे बिना बाद में अपने आप काम कर सकती है और बहुत अचीवमेंट कर सकती है। देखा जाए तो हिंदी समाज जब हमने बनाया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो 3 बनाने वाले लोग थे, हमने मीटिंग करी, हमने कहा कि हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोई हिंदी समाज नहीं है। वो आज इतने मेहनत से काम कर रहा है कि 10 पाठशालाएं चल रही हैं, काफी योगदान कर रहा है कि लोगों को हिंदी सिखाई जा सकती है, जिन जिनका इंटरेस्ट है, खास करके जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो भी कुछ सीख सकते हैं। मुझे भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया था कि हिंदू एसोसिएशन को लीड करने का, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर मंदिर नहीं था, छोटे से हॉल में मंदिर चलता था, तो मैंने कहा कि एक कमिटी ज्वाइन करके अपने प्रेसिडेंट के टाइम पे 2003-04-05 में ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मंदिर का काम हम पूरा कर देंगे। ये कुछ समझिए कि भगवान ने कुछ दैविक शक्ति ऐसी दी कि मैं सबको लीड कर पाया और $1 million का जो है उस टाइम 2003-04-05 में एक्सपेंडिचर था, क्रिएट करके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग, उसे हम पर्थ हिंदू टेम्पल कहते हैं, उसमें मुझे लीडरशिप रोल प्ले करने का मौका दिया। अब 10 साल पहले ही डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत हो रहे थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, टोटल 300 रिपोर्टेड केसेस में 100 इंडियंस के थे, और फिर जो बिरीमेंट केसेस, जो कोई मर जाता था या उनके कैसे संस्कार होने हैं और जो उनके पास किसके पास पैसे नहीं है उनकी कैसे हेल्प होगी, तो इस टाइप की बातें फिर हमारी जो उस टाइम संस्था थी नहीं कर पाती थी। तो एक और कौंसल जनरल ने यहाँ पे उन्होंने एक संस्था बनाने का आइडिया दिया, तो मुझे फिर से चुन लिया गया, तो मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया था ये काम, और आज 10 साल हो गए। वो संस्था का नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। बिरीमेंट के केसेस करीब 300 के करीब ऐसे हम, मतलब जिनके डेड बॉडीज के केसेस, कुछ को इंडिया भेजना पड़ता है, कुछ को यहीं पे मैनेज करना पड़ता है, वो हमने हैंडल किए हैं। एल्डर अब्यूज, यहाँ पे जो भी गाइडेंस मांगते हैं हम हमेशा करते हैं कि कभी एल्डर्स को जरूरत पड़ जाती है कैसे अपने विल्स को हैंडल करें, तो इस टाइप के काम फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन बहुत अपने गौरव के साथ करती है।
7: ऐसी क्या चीजें रही हैं जो आपको इतने सालों से समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करती रही हैं? What has kept you motivated?
8: भारतीय संस्कृति में ही सेवा का बहुत महत्व है, और कुछ ये है कि बचपन से ही मेरे माता पिता ने सिखाया। मेरे पिताजी भारत के काफी नामी सिविल इंजीनियर थे, भाखड़ा और ब्यास डैम बनाने में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने शुरू से ही मुझे ऑनेस्टी और हार्डवर्क के बारे में संस्कार दिए। तो किस्मत से मैं स्कूल टाइम पे भारत का टॉपर था, स्कूल टाइम का टॉपर था, उसकी वजह से मैं अच्छे स्कूल में पढ़ पाया, बोर्डिंग लॉजिंग सब फ्री हो पाई मेरी। तो मुझे शुरू से ही मेहनत करने का शौक है। उसके बाद नौसेना ने मुझे डिसिप्लिन और सर्विस बिफोर सेल्फ का भाव दिया, तो यही वैल्यूज मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में भी आ गई और आज तक यही मेरी प्रेरणा बनी हुई है।
7: तो डॉक्टर गर्ग, आप अपने पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। 1999 से आपकी पत्नी लीगली ब्लाइंड रही हैं, उसके साथ परिवार को बड़ा करना, कम्युनिटी सर्विस को इस तरह से ध्यान देना, किस तरीके और अपने करियर के ऊपर ध्यान देना, तो किस तरीके से आपने इन सब में एक सामंजस्य बिठाया? क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी शिकायत है कि समय नहीं मिलता।
8: वैशाली जी, बिल्कुल सही बात है कि जिससे पूछे वो यही कहता है कि समय नहीं मिलता। इतनी सारी संस्थाओं में लीडरशिप का रोल प्ले करना, इस चीजों के बावजूद कि मुझे अपने दोनों बच्चों को बड़ा करना था, अकेला सोल ब्रेड विनर था। अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ के साथ मैक्यूलर डिजेनरेशन हो गई, सडनली वो शी वाज डिक्लेयर्ड लीगली ब्लाइंड। इतने अच्छी पोजीशन पे स्कूल में टीचर और स्कूल में उसी स्कूल में स्विमिंग कोच भी थी। तो ये सब चीजें मैनेज करने के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे सब शक्ति भगवान ने दी, और भगवान ने ही अपने मंदिर बनाने में लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए मौका दिया। मंदिर में तो आप जानते हो कि जब बैठते हो तो पत्नी हमेशा साथ बैठती है। मेरी पत्नी को बहुत गौरव का अनुभव होता था जब भी मेरे साथ आके बैठती थी। उसके साथ साथ मंदिर के बाद भी जब भी मौका मिलता है वो मेरी हमेशा हेल्प करते रही है। एक मुझे टाइम डिवाइड करने का बहुत बड़ा स्किल है। अपनी 11-12 संस्थाएं जो मैं चलाता हूँ उनके अलावा अपने परिवार को भी हमेशा ध्यान रखता हूँ। जो मेरा पुत्र है वो नेवी में यहाँ पे रिजर्विस्ट है, और जब भी उसे किसी जहाज पर जाने का रिक्वायरमेंट होता है मैं उसके परिवार को यानी अपने पोतों को स्कूल से पिकअप करने में प्रायोरिटी देता हूँ हमेशा, और कोशिश करता हूँ कि जो देश के लिए जरूरी काम मेरे बेटा करने जा रहा है उसमें कोई इफेक्ट ना हो।
7: और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा डॉक्टर गर्ग, के आज की जो यंग इंडियन ऑस्ट्रेलियन जनरेशन है उन्हें वॉलंटियरिंग को लेकर के या फिर लीडरशिप को लेकर के या जो हम परसिवियरेंस की बात कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप?
8: बहुत बहुत सही सवाल है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया को केवल नौकरी या बिजनेस का स्थान ना समझें, बल्कि इसे अपना घर माने, कम्युनिटी से जुड़े, जहां मौका मिले वॉलंटियर करें, लोकल एक्टिविटीज में भाग लें और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मित्रता करें। ये नहीं सोचें कि मुझे सिर्फ इंडियंस या हिंदुओं से बात करनी है, मुझे और किसी से बात ही नहीं करनी, मैं यहाँ टेम्परेरी आया हूँ, कुछ पैसे बना के मैं वापस इंडिया चलाऊंगा, ऐसा कभी नहीं समझें। अपनी भारतीय पहचान जरूर बनाए रखें, परंतु ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज हर जगह जगह पे लिखी होंगी आपको, ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फेयरनेस और कम्युनिटी स्पिरिट। ये बार बार सरकारी डिपार्टमेंट्स आपको बार बार ये दोहराते हैं, उनको देखें, समझें और उनको अपनाएं।
7: इस पॉडकास्ट में प्रस्तुत विचार व्यक्तिगत हैं, निजी हैं, एसपीएस ना ही इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
6: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटकर सुनेंगे मनी मैटर्स सीरीज का चौथा एपिसोड। सुनते रहें एसपीएस हिंदी।
9: इस विज्ञापन को एक नाटी प्रमाणित दुभाषिये ने अनुवादित किया है।
10: This ad is interpreted by a Naughty certified interpreter.
9: एक प्रमाणित दुभाषिये के साथ आप जो कहना चाहते हैं उसे हिंदी में ठीक वैसे ही कह सकते हैं।
10: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Hindi.
9: और आपकी कही हुई बात प्राइवेट रहती है और बदलती नहीं है।
10: And what you say stays private and unchanged.
9: क्योंकि हम सब का ये अधिकार है कि हमारी बात को समझा जाए।
10: Because we all deserve to be understood.
9: एक नाटी प्रमाणित दुभाषिये के लिए पूछें। naughty.au/interpreter पर और अधिक जानकारी पाएं।
1: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार, SBS वर्ल्ड मूवीज पर। देखिए 7 दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त, या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
11: इस SBS Kickoff.
12: The new music station celebrating football anthems from around the world.
13: It's time for Africa.
11: It's live now
12: on DAB Radio, the SBS Audio app,
11: online and SBS On Demand.
3: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एसपीएस हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। और एक बार फिर से आपको आज का सवाल बता देती हूँ। आज मैंने आपसे एक बहुत ही मशहूर डायलॉग पूछा है बहुत ही फेमस फिल्म का, और आपको मुझे इस फिल्म का नाम बताना है। तो डायलॉग ध्यान से सुनिए। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। बताए कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है। नंबर है 0439799767। और आपके संदेशों का मुझे इंतज़ार रहेगा, और जल्द बताऊंगी कि आज के कार्यक्रम में किन किन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं टैक्स के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया में टैक्स स्कैम और भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, और टैक्स के समय गलत जानकारी भी बहुत ज़्यादा फैलने लगी है। नकली ATO कॉल, बड़े रिफंड का वादा करने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस, और अब AI टूल्स भी पूरे भरोसे के साथ ऑस्ट्रेलियाई टैक्स सवालों के गलत जवाब दे रहे हैं। तो मनी मैटर्स के आज के एपिसोड में इसी विषय को लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा, जिसमें बात होगी ऐसे टैक्स स्कैम्स की जिनसे हमें सावधान रहना है, असली टैक्स एजेंट को कैसे वेरीफाई करना है, और क्या अपने टैक्स रिटर्न के लिए हम AI पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं।
14: आप सुन रहे हैं
15: मनी मैटर्स,
14: SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा, और आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स। इस सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो हर साल हमारे समुदाय में अक्सर पूछे जाते हैं टैक्स सीजन से पहले। आज का टॉपिक है टैक्स स्कैम्स और मिस इन्फॉर्मेशन। टैक्स सीजन में हम हैं, और इस सीजन के आसपास बहुत सारे स्कैम्स तेज़ी से बढ़ जाते हैं। फेक ATO कॉल्स आते हैं जिसमें धमकी दी जाती है कि आपका केस कोर्ट में जाने वाला है, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि आपका रिफंड पेंडिंग है और नीचे दिए लिंक पर क्लिक कीजिए, या ईमेल आते हैं जो बिल्कुल ATO जैसे दिखते हैं पर होते नहीं। सच ये है कि ATO कभी भी फ़ोन पर आपसे धमकी भरी भाषा में बात नहीं करता, कभी भी व्हाट्सएप, SMS या ईमेल में लिंक भेजकर बैंक डिटेल्स की मांग नहीं करता, ना ही गिफ्ट कार्ड्स या क्रिप्टो करेंसी या फिर बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट की मांग करता है। अगर कोई ये सब कर रहा है तो वो निश्चय ही स्कैम है। दूसरा बड़ा इशू है फेक या अनरजिस्टर्ड एजेंट्स। अक्सर लोग किसी की रिकमेंडेशन पर टैक्स एजेंट ढूंढते हैं, पर कभी कभी ये चेक करना ज़रूरी नहीं समझते कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। और एक नई चीज़ जो आज लोग कर रहे हैं, ChatGPT या Gemini या फिर AI टूल्स से टैक्स के सवाल पूछना। इन सभी पर आज डिटेल में बात होगी, जिसके लिए हमारे साथ हैं पुनीत सिंह, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर। बहुत सारे लोग किसी कम्युनिटी मेम्बर या फिर किसी दोस्त मित्र की रिकमेंडेशन पर टैक्स एजेंट चुनते हैं। कोई कैसे चेक कर सकता है कि वो टैक्स एजेंट एक्चुअली रजिस्टर्ड है या नहीं, और कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो बताते हैं कि एजेंट डॉजी हो सकता है?
16: थैंक यू स्वाति जी। देखिए जी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब आप एक अकाउंटेंट को अप्रोच करते हो या आप किसी को अपना टैक्स फाइल नंबर शेयर करते हो, मेक श्योर आप अपना TPB रजिस्टर पे जाके, टैक्स प्रैक्टिशनर बोर्ड के रजिस्टर पे जाके उसका नाम या उसका टैक्स एजेंट नंबर डाल के चेक कीजिए कि वो रजिस्टर्ड एजेंट है कि अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि ऐसा देखने को आया है कि बहुत बड़े रिफंड्स ऑफर किए जाते हैं, आपसे आपकी MyGov डिटेल्स मांगी जाती है ताकि आपको बड़ा रिफंड करवाएंगे। दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स। एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट के पास जब आप जाओगे, बिफोर अप्रोचिंग एन अकाउंटेंट, मेक श्योर कि आप TPB की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है।
14: एक नई चीज़ जो शुरू हो गई है पुनीत, कि आजकल लोग ChatGPT या Gemini या फिर किसी और AI टूल से टैक्स के सवाल पूछ रहे हैं, ये कितना सेफ है, और ऑस्ट्रेलियन टैक्स पर AI कैसे गलत हो सकता है, या फिर असल इंसान से बात करनी क्यों ज़रूरी है?
16: देखिए जी, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होना बड़ी ज़रूरी है. AI, Gemini या क्लॉड, दे प्रोवाइड वास्ट नॉलेज, बट अब आपको देखना है कि आपका सोर्स क्या है, राइट? सो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज़ कि जो भी क्लाइंट्स या जो भी सुनने वाले हैं, कि आपको ये चीज़ देखनी है कि आप ATO की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सारी डिटेल्ड चीज़ें बताई गई हैं विद एग्जांपल्स. ATO ने हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं अपनी वेबसाइट पे, एंड दोज आर ब्रिलियंट चेंजेस. उन्होंने काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है विद एग्जांपल्स. आप सिंपली जाइए उनकी वेबसाइट पे, आप सर्च कीजिए अपना टॉपिक. उनका एक कम्युनिटी, ATO कम्युनिटी पेज भी है, जहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, एंड जो वेरीफाइड यूज़र हैं, जो अकाउंटेंट है, वो आपको आंसर भी करेंगे, ताकि आप AI ChatGPT के गलत राह पे मत जाइए.
14: पुनीत, तब बात करना चाहती हूँ टैक्स और सुपर एनुएशन से जुड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की, जैसे गारंटीड रिटर्न्स हैं या ATO अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, और फेक सुपर रोल ओवर ऑफर्स भी आते हैं. ये हमारी कम्युनिटी में भी आ रहे हैं, तो इसे कैसे कोई पहचान सकता है, और अगर कोई इसका विक्टिम बन जाए तो क्या कर सकते हैं?
16: जी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपनी TFN की जो नंबर्स है, TFN नंबर इज़ वेरी सेंसिटिव नंबर, अपना TFN नंबर सिर्फ अपने रजिस्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही शेयर कीजिए. अपना MyGov की डिटेल्स किसी को मत दीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई अनरजिस्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज चाहे बटन उसने प्रेस किया है, बट रिस्पॉन्सिबल आप हो, पेनल्टीज आपको पड़ेगी. सो मेक श्योर जब भी आप किसी को डिटेल्स देते हो, प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए कि वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है. आपको ज़्यादा बड़ा रिफंड दिला रहा है, वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है. विदाउट आस्किंग मच इन्फॉर्मेशन वो आपको एक बड़ा रिफंड दिला रहा है, वो भी एक रेड फ्लैग है. अगर आपको कोई बोल रहा है मैं आपकी GST रिफंड करवा देता हूँ, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको GST रिफंड आ जाएगी, ये बहुत बड़ा स्कैम है, एंड इसके ऊपर सीवियर पेनल्टीज हैं, जेल टर्म्स भी हैं. ऑपरेशन पोर्टिगो इसी के तहत चला था, जब 4.2 बिलियन का GST फ्रॉड हुआ है इन लास्ट 2 ईयर्स, एंड ATO इज़ वेरी सीरियस दीज डेज. सो चाहे आपका कोई भी क्लेम है, चाहे गाड़ी की आप परचेज की है और उसकी GST रिफंड करवानी है, मेक श्योर वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए रादर देन पर्सनल यूज़ के लिए होनी है.
14: पुनीत, इतनी अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रवासियों के लिए एक और बहुत रेलिवेंट टॉपिक पर, विदेश पैसे भेजने के टैक्स इम्प्लिकेशंस. भारत में हम अक्सर परिवार को पैसे भेजते हैं, या शादी के लिए पैसे भेजते हैं, या फिर वहाँ से विरासत आती है. इन सब के लिए क्या नियम हैं, इस पर होगा हमारा अगला एपिसोड. जुड़े रहिए SBS हिंदी पर. इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद. SBS हिंदी की नई श्रृंखला
15: मनी मैटर्स,
14: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में.
13: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है. SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत. अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें.
6: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अंश सुनकर अच्छा लगा होगा, अहम जानकारी मिली होगी. और आपको बता दूं कि इस सीरीज के अन्य एपिसोड SBS हिंदी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे. और आज मैंने आपसे सवाल पूछा था, एक डायलॉग बताया था और पूछा था कि बताइए कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. और फिल्म तो आप सभी को पता ही है, ये डायलॉग है चक दे इंडिया का. खूब सारे मैसेजेस आए हैं मुझे. हिमलता पुरोहित जी लिखती हैं, नमस्ते भव्या जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ और संदेश आए हैं लेकिन इन्होंने अपने नाम नहीं लिखे हैं, इनका जवाब बिल्कुल सही है. संदीप मित्तल का जवाब बिल्कुल सही है. इसके अलावा SD का जवाब बिल्कुल सही है मेलबर्न से. उसके अलावा रीता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है डैंडनोंग नॉर्थ से. साथ ही हमें संदेश आया है क्यूरी जी का, जिनका जवाब बिल्कुल सही है. तेजस का जवाब बिल्कुल सही है, लिखते हैं लव योर वॉइस, थैंक यू सो मच. इसके अलावा मेलबर्न से दिव्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और कुछ और संदेश भी आए हैं जिनका जवाब सही है. दलजिंदर जी का जवाब बिल्कुल सही है. और कुछ और संदेश मुझे आए हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखे हैं. तो भैया, अगर आप अपना संदेश मुझे भेज रहे हैं तो आगे से ध्यान रखें और अपना नाम मुझे ज़रूर बताएं. खैर, आज के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी. उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. एक बार फिर से SBS हिंदी और मेरे यानी भव्या पांडे के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले मंडे, जहाँ लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ नए गाने और कुछ फिर से इंटरेस्टिंग. उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे और हम फिर से एक बार खबरों की ओर रुख करेंगे. तब तक जाने से पहले आज की शाम का ये आखिरी गाना सुन के जाएं.

गर्दा उड़ा दिए। अरे गर्दा उड़ा दिए।

बिल्ली ऐसे लफड़ा करे हैं, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछले है जैसे कुनकन की मछली, स्टाइल झूठ

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

से समिया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक अतरंगी भूत की कहानी, कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे गाने। नामियों के पीछे खड़ी है ये भूत, उसके बिस्तर में उसको पकड़ दिया।

0: जैसे मैं खेल रहा लुका छुपी और छुप गया मार्स पे और मुझे कोई देख नहीं रहा। ये चोरी किया मैंने रानी हार को बनके मिस्टर इंडिया और मुझे कोई देख नहीं रहा।
1: टेंशन सारी छोड़ दी ओए, आज कमी ना हो शोर की ओए, हाँ मुझे डांस आया आया बड़ी जोर से आज।

मेरा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रात में वह भी एक रात हुआ है। आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

lille hoi. Ja. Oh ja. Yeah.

0: God damn.
1: चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे। चलो अब सच बता देते हैं।

0: कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।
1: SBS साउथ एशियन।

के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।

0: में हार के वो जा रहा है कोई शब-ए-गम पुकार। वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूप गए दिन बहार।
1: Wall to Wall Music, playing now on SBS South Asian.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: midday listening to SBS Tamil on SBS South Asian or anytime on the SBS audio app.
1: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
2: Ayo, G-Funk.